0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और

0: 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
1: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया।

0: है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरु मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
1: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्ता ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट, अमेरिका यूके कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today. Rajbhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast, 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Boma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record-extending 8th Women's Asia Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across.
6: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
5: The leaders who attended the summit included Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, Iranian President Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi, President of the Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Uganda's Vice President Jessica Alupo, besides others, also attended the summit. Union Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA-ruled states before 2029.
7: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड
8: वी इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सेवरल स्टेट आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल इंप्लीमेंट द यूसीसी इन ऑल 21 स्टेट्स गवर्न बाय द बीजेपी लेड एनडीए बिफोर 2019 द भारतीय न्याय संहिता विच हैज बीन क्रिएटेड हैज सर्व्ड टू गिव एन इंडियन फाउंडेशन टू द

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: और इसी Musically Yours पर आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव. हेलो, हाय, आदाब और सत श्री अकाल. एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आपका फेवरेट शो, जिसके बारे में आपको पता ही है. जी हाँ, जो कि है मस्त मुंबई, और मुंबई के मस्ताने इसमें रहेगा सेगमेंट आपके पास, जिसमें हम आपके पास लेकर आते हैं बहुत सारी घटनाएं और उपलब्धियां और खासकर कि उस दिन क्या है, दिन विशेष की बातें. तो आज सबसे बड़ी बात पहले तो ये है कि आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी का इंतजार खत्म हो गया है. आज यानी 14 सितंबर 2026 सोमवार को देशभर में गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी, और इसी के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव की शुरुआत होगी. घर और गणेश पांडाल में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजा की जाएगी, और मान्यता है कि गणपति की पूजा करने से जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं. तो आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को इसकी बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और गणपति बप्पा इसी तरह आपके और मेरे जीवन में सारे विघ्नों को हरें, हमें सद्बुद्धि दें, बुद्धि के देवता हैं, और साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें उनसे मिलती है. और सबसे पहले पेश करता हूँ अब ये गीत मोरया रे.

मौजूद हूँ आप लोगों के बीच में, आपका हमराज आरजे अवनव। और जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल मॉस मुंबई है आप लोगों के साथ, आप लोगों के रेडियो पर ऑन। और जी अगर आप कार में सुन रहे हैं, आपके मोबाइल में सुन रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है, मैं हूं आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो एक और बात, आज आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और ये निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत लिया गया था। देश में पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। यह दिन हमारी संस्कृति, एकता और राष्ट्रीय पहचान की याद दिलाता है और इसका खास उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, नई पीढ़ी को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक और सम्मानित करना है। आज के दिन हम सभी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं इस दिवस के मौके पर। और आज का जो दिन खास है, बस मुंबई में मैं हूं आपका हमराज आरजे अवनव। मुंबई की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन सपनों को अपनी आवाज़, अपनी मेहनत और अपनी पहचान बना देते हैं। आज मुंबई के हमारे मस्ताने की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक ऐसा लड़का जिसने रेडियो से शुरुआत की, फिर टेलीविज़न पर आया, फिर फिल्मों, मतलब मेरी पूरी बात नहीं हो रही है, मैंने भी किया ऐसा, बट फिर भी फिर फिल्मों में पहुंचा और आज अपनी फिल्मों के जरिए उन कहानियों को सामने लाता है जिन पर समाज अक्सर बात करने से बचता है। जी हाँ, नाम है आयुष्मान खुराना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले आयुष्मान एक आरजे थे? जी हाँ।

दिल्ली के बिग एफएम से उन्होंने रेडियो की दुनिया में अपना करियर शुरू किया, उनकी आवाज़ ने लोगों से रिश्ता बनाया और फिर आया वो मौका जिसने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। साल 2004 रूडीज सीजन 2, आयुष्मान ने शो जीता और उसके बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, रेडियो से टेलीविजन, टेलीविजन से वीजे और फिर एक शानदार होस्ट के रूप में उन्होंने कई सारे शो किए। लेकिन शायद उनके दिल में कैमरे के सामने सिर्फ होस्ट बनने से कहीं बड़ा सपना था, सिनेमा का सपना। और साल 2012 में आया विकी डोनर, अलग सब्जेक्ट, अलग किरदार और एक बिल्कुल नया हीरो। आयुष्मान ने ऐसा किरदार निभाया जिसके बारे में शायद उस वक्त हिंदी फिल्मों में खुलकर बात करना आसान नहीं था। फिल्म चली, आयुष्मान चले और बॉलीवुड को एक ऐसा एक्टर मिला जो आम आदमी की असाधारण कहानियां भी कह सकता है।

बनाऊ आप लोगों के साथ यहाँ पर आपका हमराज आरजे बना 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर। जी हाँ, और बात चल रही है आयुष्मान खुराना की। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कभी दमला के आयशा का प्रेम, कभी बरेली की बर्फी की शरारत, कभी बधाइयों का परिवार और कभी ड्रीम गर्ल का मज़ेदार अंदाज। और फिर आया अंधाधुन, एक ऐसा किरदार जिसने साबित कर दिया कि आयुष्मान सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक ही सीमित नहीं है। एक ब्लाइंड पियानिस्ट का किरदार और एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसे उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तक पहुंचाया। और इसके बाद आर्टिकल 15 में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का किरदार, यानी एक तरफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन और दूसरी तरफ समाज के कठिन सवाल, और शायद यही आयुष्मान की सबसे बड़ी खासियत है।

हैं जिनमें हम अपने आसपास के किसी इंसान को देख सकें। लेकिन उस कहानी में कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें सोचने को मजबूर कर देता है, और शायद इसलिए आयुष्मान की कहानी मुंबई के लिए भी खास है, क्योंकि मुंबई भी तो ये सिखाती है ना, पहले अपनी आवाज बनाओ, फिर अपनी पहचान, और फिर अपनी जगह।

तो मुंबई, अगर आज आपको भी लग रहा है कि आपका सपना थोड़ा बड़ा है, तो याद रखिए, सपना बड़ा होने से डरना नहीं चाहिए, बस उसके लिए रोज थोड़ा बड़ा कदम उठाना चाहिए। लेट सी, मतलब सपने तो खैर मेरे ही बड़े हैं, लेट सी मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ट्राई भी करता हूँ और हर दिन एक बड़ा कदम उठाता भी हूँ। पता नहीं कहाँ जाके बात अभी समझ में नहीं आ रही, रुक रही है या बन रही है। हालांकि सबसे अलग हिंदी अभिनेताओं में उन्होंने अपनी जगह बना ली, और कभी कभी अगला बड़ा सितारा किसी बड़े स्टूडियो में नहीं, किसी छोटे से रेडियो बूथ में बैठा होता है, और शायद उसके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, एक आवाज़ और उस आवाज़ पर भरोसा। मैं हूँ आपका आरजे, और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई, मुंबई के मस्ताने। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग आयुष्मान खुराना की, और बहुत सारी फिल्म्स आई, और उसके बाद आई थी दम लगा के हईशा, जिसका ये था गीत, और उसके बाद दर्द करारा।

अगले के बाद एक कुछ गीत और आयुष्मान खुराना के ही 9:11 हो रहा है, और साथ साथ हिंदी दिवस भी है तो उसको लेकर भी कुछ और भी प्यारे प्यारे से गीत लेकर आऊंगा। परिंदा रंग हो ही गया था और उसके बाद आया आपके पास दर्द करारा मोह मोह के धागे, और अब सड़ी गली आ जा।

और सभी लोग मेरे साथ मौजूद रहते हैं। मैं हूं आपका हमराज आरजे अवनाथ। तो मुझसे अक्सर कहते भी है कि भाई उनके नाम भी शामिल किए जाएं। जी हां, आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं और जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं ज़रूर बताता हूं। तो आप ही बता ही रहा हूं, प्रमोद जी हैं हमारे साथ, विजेंद्र हैं और अकुला से भी आर श्री नायक हैं, पंकज मौहार हैं, श्रीधर हैं, कल्पना है, यशवंत हैं, शुभलक्ष्मी हैं, प्रदीप हैं, वैदेही हैं, ममता हैं, प्रकाश शिंदे हैं, अधिवक्ता हैं, विश्वास हैं, आर्यन सूर्यवंश सोमवंशी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो स्पेशली आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के दिन की, और हम लोगों के साथ बने हुए उसके लिए भी धन्यवाद। और आज है, जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, आयुष्मान खुराना का बर्थडे भी आज ही पड़ता है, 14 तारीख को उनका जन्मदिवस है। अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज गणेश चतुर्थी का शुभारंभ भी है और आज हिंदी दिवस भी है, तो मतलब एक साथ काफ़ी सारे उपलक्ष हैं और इन्हीं सब उपलक्षों में आज का ये शो भी है जो सभी लोगों को डेडिकेट है। आज की इस खूबसूरत सुबह दोपहर शाम को समर्पित करते हैं उस भाषा के नाम जिसमें हम अपने सपने देखते हैं, हंसते हैं, प्यार करते हैं, रूठते हैं और अपने दिल की बात कहते हैं। कहते हैं ना कि भाषा वही खूबसूरत होती है जिसमें दिल की बात बिना झिझक कही जा सके, और हिंदी हमारे लिए सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी यादों की भाषा है, हमारे घर की भाषा है, कहानियाँ, कविताएँ और भावनाओं की भाषा है। आप भी इस बातचीत में शामिल हो जाइए, हमें बताइए आपका हिंदी का सबसे पसंदीदा शब्द कौन सा है, कोई ऐसा शब्द जो आपको सुनते ही अच्छा लगता हो, माँ, दोस्ती, सुकून, प्यार, अपनापन या फिर कोई अलग बिल्कुल शब्द, हमें बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि उस शब्द की आपके दिल में क्या खास जगह है। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। नंबर है 8657661071। पेश करता हूं अब नैना दा क्या कसूर।

जी हाँ, ये था नैना था क्या कसूर, और नैना का तो भाई कोई कसूर होता ही नहीं, जैसा कि आपको पता है। बस नैना जहाँ मिल जाए, कहते हैं नैना चार आंखें ही होती हैं, दिल की जुबान और आंखों की गुस्ताखियाँ, यानी कि आंखों पर नैनाओं पर तो तेरे नैना इतने कातिल मार ही डालेंगे, और दगाबाज रे तेरे नैना दगाबाज रे, एक के बाद एक। दत्ता केदार कहते हैं कि भाई मेरा हिंदी का फेवरेट शब्द है सुकून, और गणेश चतुर्थी की उन्होंने शुभकामना दी। पंकज मावड़ कहते हैं जो हिंदी का मुझे खूबसूरत शब्द पसंद है, किसी के अच्छा ही बताना होता है खूबसूरत, तो ये शब्द का उपयोग हमेशा होता है। और बस इतनी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं आप लोगों के, और ये थी हिंदी की बात, हिंदी दिवस की बात। हम रोज़ कहते हैं कैसे हो, खाना खाया, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, छोटे छोटे शब्द रिश्तों को बड़ा बना देते हैं, और यही तो हिंदी की खूबसूरती है, सादगी में अपनापन और शब्दों में भावनाएँ। जुड़े हुए हैं आप लोग इस खास मौके पर, तो क्यों ना सुने एक ऐसा गीत जो हमारी यादों और भावनाओं से भी जुड़ा हो। जुड़े रहिए आर एफएम रेनबो पर मेरे साथ, आपका अमराज आरजे अभिनव। नज़म नज़म

मेरे पास कुछ और शब्द भी आ रहे हैं और एक और शब्द आया है, वो है बेशकीमती। लेकिन हालांकि ये एक फारसी प्रीफिक्स है, यानी कि उसका शब्द है जिसका अर्थ होता है ज़्यादा, और कीमती होता है अरबी भाषा का शब्द जिसका मतलब है कीमत से। और इसका हिंदी अगर वर्ड है अर्थ बताऊँ हिंदी में, इसका जो सीधा अर्थ है वो होता है बहुमूल्य, मूल्यवान या अनमोल। तो इसके वाले शब्द ये होते हैं जो कि स्पेशली अभी मेरे पास आया था, बेशकीमती। तो बेशकीमती वो नहीं, स्पेशली वो मूल्यवान होगा। ये आर्यन सोमवासी कहते हैं मुझे कि माँ शब्द मुझे हिंदी में कहने में हमेशा अच्छा लगता है। नमस्कार सर, ओके, डरो मत, कोई नहीं होगा, ये शब्द बहुत उन्हें अच्छा लगता है। यशवंत जी ने मुझे लिखा है, तो वैदेही जी ने जो लिखा है बेशकीमती, उसकी जगह होता है मूल्यवान, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो इस तरह के ये बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रभाव रहा है और मिले जुले रहे हैं हिंदी में भी। खूबसूरत गीत था, और संगीत की तरह भाषा भी हमें बहुत ज़्यादा जोड़ती है। हिंदी ने अलग अलग क्षेत्रों, संस्कृतियों और पीढ़ियों के बीच एक खूबसूरत सा पुल बनाया। आज हिंदी दिवस पर हम सिर्फ हिंदी बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अपनी भाषा से जुड़े भी रहने की। तो एक ये रही बात, और आयुष्मान खुराना की बात तो मैं कर ही रहा हूँ। खुश मिजाज, शान, जिंदा दिल, नटखट या बिंदास, ये सोचिए। और इसके साथ मुझे भी अपने पसंदीदा और भी बातें और शब्द बताइए। तब तक के लिए मैं आप लोगों के साथ ब्रेक पर रहूंगा, यानी कि गानों के साथ रहूंगा। FM रेनबो मुंबई पर 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स।

झम झम झम झम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम छम गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मय घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। सोतरंदन पंत की ये कुछ पंक्तियां यानी कि लाइंस आपके पास लेकर आया हूँ मोनी मन के बाद। अब एक अलग सॉन्ग देता हूँ आप लोगों को, पहले दिले नादा लेकर आता हूँ, फिर तू मिले।

हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपका हमराज आर जेवना। और जी हाँ, मस्त मुंबई है और चल रहा है आप लोगों का मुंबई के मस्ताने, आपका फेवरेट शो। आज हमने बात की हिंदी दिवस की, हमने बात की गणेश चतुर्थी की, हमने बात की आयुष्मान खुराना की, और हमने इन सारी चीजों के बावजूद बात की आज आप सबकी। अब आप सबके मेरे पास मैसेजेस आ ही रहे हैं, आप सबको गीत बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप सभी को दोबारा गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ और बातें कहता हूँ, ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारें गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर, तरु चरचर, दिन रजनी ओपाख बिना तारे शशि दिनकर, सावन। और ये हैं एक से बढ़कर एक

नमस्कार और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। भारत ने 12 और 13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 सहयोगी देशों के नेताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। आज देशभर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी

मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। कल फाइनल में उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: म्यूजिकली योर्स पर बना हुआ हूँ मैं आप लोगों के साथ, आपका हमराज आरजे अभिनव। जी हाँ, आप चल रहा है नमस्ते भारत, है प्रीत जहाँ की रीत सदा नमस्ते भारत शो में आपका फेवरेट सेगमेंट। इस सेगमेंट में आपको जैसा कि पता है हम आपको लेकर जाते हैं एक और जगह पर जहाँ भारत की विविधता है, एकता है, धर्म, जाति, त्यौहार, मेरे रिवाज, और साथ साथ मैं तो हर बार आप लोगों को लेकर ही आता हूँ कहाँ, ऐसी जगह जहाँ पर बात होती है एक शहर की, वहाँ पर यात्रा होती है और वहाँ ले जाता हूँ। तो बस आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, मैं हूँ आपका आरजे अभिनव, और एक ऐसा भारत जहाँ शहर की अपनी आवाज़ है, कहीं मंदिर की घंटियाँ, कहीं अजान की सदा है, कहीं समुद्र की लहरें, कहीं पहाड़ों की खामोशी, और कहीं बात करने का भी एक अलग अंदाज़ है। आज उसी अंदाज़ की बात करते हैं, आज मिलते हैं उस शहर से जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ लोग नहीं मिलते हैं, अरब से मिलते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है लखनऊ, लखनऊ घूमती के किनारे बसा, पेश करूँगा इस गीत के बाद।

पर हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपका हमराज आरजे अभिनव जी। हाँ, 10:06 हो चले हैं। नमस्ते भारत, में है आपका है प्रिय जहां की रीत सदा। बात कर रहे हैं आज हम लखनऊ की। गोमती के किनारे बसा अवध की शान समेटे, नवाबों की यादों को अपने आंगन में संजोए और शायरी, संगीत, कला, तहजीब और मोहब्बत से बना एक शहर। तो आइए आज लखनऊ से ही सुनते हैं लखनऊ की कहानी। अरे जनाब, इतनी जल्दी में क्यों हैं? बैठिए, पहले मुस्कराइए, फिर बात कीजिए। मैं लखनऊ, मेरी बातचीत भी थोड़ी तहजीब से होती है और शिकायत भी। आपसे एक गुजारिश है, कहकर शुरू होती है। मैंने सदियों को बदलते देखा है। सल्तनतें आई गुजरी, मुगल आए, नवाब आए और फिर अंग्रेज भी आए, लेकिन मैं अपनी पहचान बचाए रहा, क्योंकि मेरी पहचान सिर्फ मेरी इमारतों में नहीं, मेरे लोगों के व्यवहार में है, मेरी ज़ुबान में है, मेरी गलियों में है, मेरी महफिलों में है, मेरे खाने में है और सबसे बढ़कर मेरे अदब और मेरी तहजीब में है।

बना हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपका हमराज, और बात चल रही है जी हाँ नमस्ते भारत, मैं लखनऊ की हूँ। लखनऊ आपकी सबसे खास बात क्या है जनाब? ये सवाल भी बड़ा नाइंसाफी वाला है। मुझसे मेरी सबसे खास बात पूछेंगे तो मैं क्या क्या बताऊँ। मेरे पास बड़ा इमाम बड़ा है, मेरे पास रूमी दरवाज़ा है, गोमती है, पुराने महल हैं, मेरे पास बाग है। लेकिन अगर आप सच पूछें तो मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरी गंगा जमुनी तहजीब है। मैंने अलग अलग मज़हबों और संस्कृतियों को साथ रहते देखा है। मेरी गलियों में त्यौहार अलग हो सकते हैं लेकिन खुशियाँ वो सबकी होती हैं।

और आपकी शामें? आह शामें, मेरी शामों की बात मत पूछिए जनाब। कहते हैं ना कि सुबह बनारस शाम अवध, मेरी शाम में गोमती का किनारा हूँ। हवा में थोड़ी ठंडक हो, किसी महफिल से आती शायरी हो, तो फिर कौन जल्दी घर जाना चाहेगा। लखनऊ, आपकी ज़ुबान में इतनी मिठास कहाँ से आएगी? मिठास वो तो मेरे लोगों की विरासत है। यहाँ क्या चाहिए भी थोड़ा प्यार से पूछा जाता है। बताइए आपकी क्या खिदमत करें, यही तो मेरा अंदाज है। मेरी तहजीब में सामने वाले को सम्मान देना सिर्फ औपचारिकता नहीं है, एक आदत है। और शायद इसलिए मेरी बातचीत में उर्दू की नज़ाकत, हिंदी की मिठास और अवधी की अपनापन भरी गर्माहट साथ साथ मिलती है।

मौत का आना तो एक दिन मुहैया ना, नींद आखिर रात भर क्यों नहीं आती? आगे आती थी हाल दिल प्यासी, अब तो कमबख्त वो भी नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मुझे तो बस ये याद हो गया, लगे याद क्या कहूँ। लखनऊ आपकी जबान में इतनी मिठास कहाँ से आई? और फिर आती है आपकी चिकनकारी। अरे वाह, अब तो आपने दिल की बात छेड़ दी। मेरी चिकनकारी सिर्फ कपड़े पर किया गया काम नहीं है, धागे से बनी हुई मेरी पहचान है, बुनी हुई है, बारीक नाजुक खूबसूरत, जैसे किसी ने कपड़े पर हाथ से कविता लिख दी हो। चिकनकारी की सदियों पुरानी परंपरा आज भी मेरे साथ चल रही है। मेरे चौक की

मैं रहा हूँ आप लोगों के साथ, आपका हमराह आर जे अवनो नमस्ते भारत में है प्रीत जहांगीरी। सदा बात चल रही है लखनऊ की और लखनऊ से, लेकिन लखनऊ की कहानी खाने के बिना कैसे पूरी हो सकती है। जनाब आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, मेरे यहाँ खाना सिर्फ खाना नहीं है, दावत है। कहते हैं ना दावत इश्क, मेरे बावर्चियों और रकाबदारों ने धीमी आंच पर पकाने की जो कला विकसित की वही आगे चलकर दम की पहचान बनी। कबाब, बिरयानी, कोरमा, निहारी, कुलचा, शीरमाल, रुमाली रोटी और हाँ टुंडे कबाब, मेरी गलियों में स्वाद भी तहजीब से मिलता है। लखनऊ, अगर आपको अपने बारे में एक शेर कहना हो तो शेर तो बहुत है जनाब, लेकिन मेरी कहानी शायद यूं कही जा सकती है, मेरी गलियों में मोहब्बत की रवायत आज भी है, मेरी मिट्टी में तहजीब की इबादत आज भी है। वक्त बदला, दौर बदले, शहर बदले बहुत, मगर लखनऊ के दिल में, लखनऊ में दिल से मिलने की आदत आज भी है।

0: भाई हम लोग बात कर रहे हैं अब किसकी, वही लखनऊ की। लेकिन आपकी कहानी सिर्फ नवाबों और महफिलों की नहीं, 1857 की क्रांति में भी लखनऊ ने इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय को देखा था।
1: बिल्कुल,
0: मैंने संघर्ष भी देखा है, मेरी खूबसूरती और मेरी खूबसूरत इमारतों के पीछे इतिहास के कई कठिन पन्ने भी छिपे हुए हैं। 1857 वो दौर जब आज़ादी की आग ने मेरे शहर को भी अपने में लपेट लिया था। मैंने बहादुरी देखी, बलिदान देखा और इतिहास को करवट लेते देखा। यही तो मेरा सच है। मैं सिर्फ नज़ाकत नहीं हूँ, मैं जज्बा भी हूँ। मैं सिर्फ शायरी नहीं हूँ, मैं संघर्ष भी हूँ। मैं सिर्फ नवाबी विरासत नहीं हूँ, मैं उस भारत की कहानी हूँ जो बार बार बदलता है लेकिन अपनी आत्मा को बचाए रखता है। तो लखनऊ, अगर आज पूरे भारत को एक संदेश देना हो तो क्या कहेंगे? बस इतना कहूँगा कि जनाब, तरक्की कीजिए, नई दुनिया को अपनाइए, नई तकनीक सीखिए, नए सपने देखिए, लेकिन अपने लोगों से बात करने का सलीका मत भूलिए। दुनिया कितनी भी तेज़ हो जाए, इंसानियत को धीमा मत पड़ने दीजिए। मंदिर हो या मस्जिद, त्यौहार कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, दिल में जगह होनी चाहिए, क्योंकि शहर इमारतों से नहीं बनते, लोगों से बनते हैं। और भारत, भारत तो उन करोड़ों लोगों से बनता है जो अलग अलग होकर भी एक साथ हैं। वाह लखनऊ, आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर चाय पी रहे हो। तो फिर जाइए मत जनाब, थोड़ी देर और बैठिए। मेरी गलियों में अभी बहुत कहानियां बाकी हैं, गोमती के किनारे अभी शाम बाकी है, किसी नुक्कड़ पर अभी कई शेर बाकी हैं, किसी दुकान पर अभी चाय बाकी है और किसी घर में मेहमान के लिए दरवाजा अभी खुला हुआ है। तो दोस्तों, आज लखनऊ ने हमें सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाई, उसने हमें भारत की खूबसूरत तस्वीर दिखाई। एक ऐसा भारत जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ चलती हैं, जहाँ कला सिर्फ संग्रहालय में नहीं लोगों के हाथों में रहती है, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता रिश्ते बनाता है, जहाँ भाषा सिर्फ संवाद नहीं संस्कार बन जाती है, और जहाँ किसी से मिलते वक्त आप कहना भी एक संस्कृति है। यही है हमारा भारत, यही हमारी खूबसूरती, अलग अलग रंग लिखने की तस्वीर। और ऐसी एहसास के साथ मैं हूँ आपका हमराज आरजे अभिनव, आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत। कार्यक्रम है ही प्रीत, जहाँ की रीत सदा, क्योंकि सच तो यही है, मेरा भारत सिर्फ एक देश नहीं एक एहसास है। नमस्ते।

कैसा लगा हमारा शो, प्लीज हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा नंबर है 8657661071। आप लोगों के पास ये नंबर है ही है, आपके मैसेज हम लोगों के पास आ जाते हैं। और FM रेनबो मुंबई के नाम से हम लोग हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और साथ में AIR_ मुंबई के नाम से हैं ट्विटर पर। मेरा नाम है RJ अभिनव पराशर, सभी जगहों पर आप लोगों को मिल जाऊंगा। बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के दिवस की। और अगली बात होगी अब किरण माला जी की, वो आप अगले शो में सुनिएगा। पेश करता हूं बैक टू बैक ये गीत।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। नवी मुंबई में आज गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। मुंबई में 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 16,800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध या लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत देने की अपील की है। गणेश उत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई मेट्रो की लाइन 2A, 7-9 और 2B पर सेवाएं आज से 25 सितंबर तक रात 12:30 बजे तक चलेंगी। त्योहार के दौरान लोगों की सुविधा के लिए इन चारों लाइनों पर 10 से 15 अतिरिक्त सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। भारत ने पुरुष क्रिकेट में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। श्रृंखला के विशेष 2 मैच मंगलवार और बृहस्पतिवार को इसी मैदान पर खेले जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 11:02 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। जी हाँ, मैं हूँ RJ किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये समय होता है कार्यक्रम ब्रेक फ्री का। तो दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, तो आप सभी को इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही एक और खास दिन है, वो क्या है वो हम बताते हैं आपको। तो आज बने रहिए हमारे साथ 2 बजे तक, तो हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। जो खास दिन है उसके बारे में भी बताएंगे, वो क्या है आप सुनेंगे और जानेंगे इस गाने के बाद। तब तक एंजॉय करिए इस गाने को।

जी हाँ, इस समय ठीक 9:11:09 हुए हैं जी, 9 बजकर नहीं। कभी कभी हम देखते हैं और सुनते हैं कुछ और ही मुँह से निकल जाता है, लेकिन 11:09 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि आज एक और खास दिन है, वो क्या है वो हम बताएंगे अभी आपको। जी हाँ, अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

11:23 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री। देश भर में आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर माता पिता के लिए ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सिखाना ज़रूरी है। कई माता पिता का मानना है कि बच्चों को करियर में बेहतर संभावनाएं तभी मिल सकती है जब उनकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो, इसलिए बच्चों को अंग्रेजी सिखाने में माता पिता काफ़ी मेहनत करते हैं। वे उन्हें अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं और अलग से ट्यूशन क्लासेस भी दिलाते हैं ताकि बच्चे इस लैंग्वेज में अच्छी तरह से माहिर हो।

11:29 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री। तो दोस्तों, बच्चों को हिंदी सिखाने का सबसे पहला फायदा ये होता है कि रिश्तों की डोर मजबूत बनी रहती है। कई बार देखा गया है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा की सही नॉलेज नहीं होने पर वे बड़े होकर अपने माता पिता या अन्य बड़े बुजुर्गों के साथ इमोशनली दूरी महसूस करने लगते हैं। दरअसल कुछ बच्चे अपनी फीलिंग्स मातृभाषा में उन्हें समझा नहीं पाते हैं और माता पिता या फिर अन्य बड़े उनकी बात को अंग्रेजी में समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच एक इमोशनल गैप भी आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को हिंदी भाषा भी सिखाई जाए। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने और साथ दिया है हरिहरन ने।

11:43 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि उन्हें अपनी मातृभाषा का ज्ञान हो। जब बच्चे अपनी भाषा को समझते हैं तभी वे अपने परिवार, समाज और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ गहराई से जुड़ पाते हैं। और मातृभाषा का ज्ञान केवल निजी जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये प्रोफेशनल जिंदगी में भी बेहद काम आता है। दरअसल जब बच्चे अपने करियर में किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो अपनी मातृभाषा की समझ उन्हें अपने जूनियर्स और स्टाफ से सहज तरीके से बात करने में मदद करती है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री। आज हिंदी भाषा के सम्मान में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये वो तारीख है जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ये दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का महत्व उजागर करना, उसे संरक्षण देना और हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस मौके पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों और सामाजिक संगठनों में हिंदी साहित्य, कविता पाठ जैसे ढेरों कार्यक्रम होते हैं। तो अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 12:01 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे का। मैं हूँ आरजे किरण माला, से मैं आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

यानी कि म्यूजिक कैफे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म हम है राही प्यार के से। तो हिंदी सिनेमा में फिल्म स्टार को लेकर फैंस में जहां दीवानगी देखने को मिलती है, वहीं कई सिंगर भी हैं जिनका दर्जा सुपरस्टार से कम नहीं है। उनकी सुरीली आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है। ऐसे ही एक सिंगर है अलका याग्निक, जो 90 के दशक में राज करती थी। उन्होंने कुमार शानू और उदित नारायण जैसे मेल प्लेबैक सिंगर के साथ अपनी आवाज़ दी। फीमेल प्लेबैक सिंगर की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आता है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना अलका याग्निक की आवाज़ में, और इस गाने को लिखा है समीर ने, फिल्म है राजा हिंदुस्तान।

12:14 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1980 में फिल्म पायल की झनकार से की थी, लेकिन उन्हें सफलता फिल्म तेजाब के सुपरहिट गाने 1, 2, 3 से मिली थी, जो रातों रात बहुत लोकप्रिय हो गया था। उन्होंने अपने करियर में लगभग 22,000 से अधिक गाने गाए हैं और वो बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिका हैं। वहीं उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो चलिए सुनते हैं यही गाना 1, 2, 3, 4।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएन पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उमंग और ठीक 1 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम हिट एंड हॉट। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ

0: जीजी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे, गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
2: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूं।
1: बेचारा जोजो।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
5: तो बच्चों, सुना आपने

0: जरा याद कीजिए कि जो जो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
1: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।

0: उनकी माँ का नाम रेनल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
1: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरावाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
0: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
0: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
2: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। बधाई हो।
3: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
4: बहुत बहुत बधाई हो।
1: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
0: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
5: आइए मारिया जी।
3: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ? कुछ उदास लग रहे हो।
5: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं? मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
3: और बुरी?
5: जी।
3: अब भला वो कैसे?
5: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
3: हाँ हाँ, जरूर।
5: जी
0: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
5: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
3: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि

0: यह सामान्य नहीं है।
1: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
0: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए। लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं?

0: इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
1: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
2: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
1: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
0: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
1: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
0: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
2: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
2: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का

0: कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
1: जी,
0: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
1: जी जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मॉन्टेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
3: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
2: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
3: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
2: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
3: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
2: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
4: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्ष।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अरशद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। अब से कुछ ही पलों में यानी ठीक 1 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम हिट एंड हॉट।

नमस्कार, इस समय ठीक 1:05 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम हिट एंड हॉट का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में है ये गाना, फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। तो एंजॉय करते हैं इस गाने को।

1:18 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज पूरे भारत में यानी विशेषकर महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सार्वजनिक पंडालों के साथ साथ लोग अपने घरों में भी बप्पा की मूर्ति लाकर उन्हें सुंदर फूलों और मखमलों से सजाते हैं और शहरों और गांव में महीनों पहले से बड़े बड़े और सुंदर पंडाल बनाए जाते हैं जहां अद्भुत लाइटिंग और सजावट की जाती है और साथ ही भगवान गणेश जी को उनका पसंदीदा भोग मोदक और पूरन पोली चढ़ाया जाता है और कई जगहों पर भव्य महाप्रसाद का आयोजन होता है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना और साथ ही मैं बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जो हमें सुबह से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सुनते हैं इस गाने को, देवा श्री गणेशा।

1:40 हुए हैं, तो चलिए कार्यक्रम हिट एंड हॉट को आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही हम बता दें कि बहुत सारे नए नए श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं जो हमें सुन रहे हैं इस समय। जैसे कि मैं नाम लूँगी, बता दूँगी कौन कौन से हैं श्रोता, लेकिन तब तक हम इंजॉय करते हैं इस गाने को।

1:46 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो और कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट। तो ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जिनके घर गणपति आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से और शांति से पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 3 साल तो कोई 4 साल इस तरह से अपने घरों पे गणपति ला रहे हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, जैसे कि अभिजीत जी हैं गवाणकर, उनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, एकांश, लाडला, टुक टुक, ऐसे इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है। और साथ ही राजेंद्र परमार जी भी हमें सुन रहे हैं और जगदीश सिंह, वीरपाल कौर मोगा पंजाब से हमें सुन रहे हैं और साथ ही प्रणव शिंदे जी भी हमें सुन रहे हैं, राकेश माथुर पुणे से जुड़े हुए हैं और आकांक्षा मनोज सिन्हा अहमदाबाद से हमें सुन रहे हैं, फिरोज सिंगनपुरिया जी हैं, पंकज मोहोड़ अमरावती से हैं और साथ ही हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से हमें सुन रहे हैं, राजेंद्र शर्मा जी भी सुन रहे हैं, गुरमीत सिंह, मीता सिंह जी भी हमें सुन रही हैं, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से संदीप कुमार जी है, हीरामणि वर्मा जी भी है, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, दिग्दर्शन और कविता जी भी हमें सुन रही हैं और लाल गिरी गोस्वामी जी भी हैं, हितेंद्र दास जी भी हमें सुन रहे हैं आसाम से, मेहर अरोरा राजस्थान, श्री गंगानगर से हमें सुन रहे हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी भी है, यशवंत आठमुड़े, विजेंद्र घटोला कोला से, ज्योति जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे

होता है जो हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथ ही काजल कक्कर के चेंबूर से अभी अभी जस्ट उन्होंने मैसेज किया है व्हाट्सएप के जरिए, वैदेही भी है, वो भी लिख रही है, गुड आफ्टरनून जी। दत्ता केदार पंडरपुर से हमें सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते लेकिन हमें सुनते हैं, बराबर रेगुलर हमें सुनते हैं, यानी हमारा FM रेनबो चैनल सुनते हैं।

तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गाना, और उसी गाने के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और साथ ही सुनते रहिए FM रेनबो।

0: districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि

0: प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां

0: गजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मॉनसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृह मंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी।

गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो लव यू जिंदगी में। शाम के ठीक 5:02 का वक्त और आज की इसी शाम पूरे 8 बजे तक रहूंगी मैं आपके साथ, मैं यानी कि आपकी आर्ज दोस्त अमिता। और आज 14 सितंबर 2026 था वो दिन जिसका

हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तो आज दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उनके नाम के जय घोष के साथ, जो है विघ्नहर्ता और सुख के प्रदाता। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बप्पा आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे, यही प्रार्थना है।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

दोस्तों आज 14 सितंबर का दिन और आज गणपति बप्पा तो बहुत से आर्य भक्तों के घर में विराजे ही हैं, पर साथ ही साथ हर साल 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। एक ऐसा दिन दोस्तों जो हमें सिर्फ हिंदी बोलने की याद नहीं दिलाता, बल्कि याद दिलाता है हमें अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होती। एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ और विविधताएं भाषा की भी भरपूर है। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी कार्यक्रम ओनली ऑन एफएम रेनबो मुंबई, जो है म्यूजिकली योर्स। और आज के इस कार्यक्रम में हमारी जो हम बात करने वाले हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम और आप जो बात करने वाले हैं, वो सिर्फ हिंदी दिवस के बारे में नहीं होगी, बात होगी हमारी पहचान की। क्योंकि बात सिर्फ हिंदी की नहीं होगी, बात करेंगे हर उस भाषा की जिसमें हमने पहली बार माँ कहा था, उस भाषा की जिसमें दादी ने हमें कहानी सुनाई थी, जिसमें पापा ने पहली बार डांटा था, जिसमें दोस्तों के साथ मिलकर हम हंसी ठिठोली करते हैं, और जिसमें शायद आज भी अगर अपने दिल की बात कहनी हो तो हम उसी भाषा में बात करना पसंद करते हैं, वो भाषा हमारी मातृभाषा।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में ये मीठा सा गीत, और गीत भी ऐसा कि जब भी सुने बस हम जो भी कर रहे हो, जहाँ कहीं भी हो, बस हम रुक ही जाते हैं। 5:18 का वक्त, 200 सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी कार्यक्रम ओनली ऑन एफएम रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स। और आज बातें

हिंदी दिवस पर मातृभाषा की। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हम चाहे कितनी भी भाषाएं सीख लें, कितने ही बड़े बड़े शब्द बोल लें, लेकिन जब दिल बहुत खुश होता है या फिर बहुत उदास होता है ना, तो हम अक्सर अपनी उसी भाषा की ओर लौटते हैं जिसमें हमने सबसे पहले महसूस करना सीखा था। क्यों? क्योंकि मातृभाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, मुझे लगता है कि वो हमारी इमोशनल मेमोरी बन जाती है, हमारे बचपन की आवाज। भारत की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है हमारे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी हमारी भाषाई विविधता, और इस बारे में भी बात करेंगे। पर आज कुछ ऐसे भी गाने हैं जो मैं चाह रही हूं आप तक जरूर पहुंचे।

0: जीवन मृत्यु फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। और दोस्तों, गीत के पहले हम बात कर रहे थे हमारे भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि हमारी भाषाई विविधता के बारे में। 2011 की सेंसस के अनुसार भारत में 121 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10,000 या उससे अधिक लोग बोलते हैं, और सेंसस में 19,500 से ज़्यादा मदर टंग यानी कि डायलेक्ट्स के जो नेम नाम थे वो भी सामने आए। यानी सोचिए ज़रा, हमारे देश में भाषाएं सिर्फ भाषाएं नहीं हैं, हज़ारों आवाज़ें हैं, हज़ारों कहानियां हैं और हज़ारों संस्कृतियां हैं, और यही तो हमारे देश को अनोखा बनाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस तस्वीर की एक और साइड भी है, इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो ये कि कुछ भाषाएं अब ऐसी हैं जो बहुत ही कम लोग बोल रहे हैं। सरकार की स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस यानी कि SPPEL के तहत 10,000 से कम बोली जाने वाली भाषाओं और मातृभाषाओं को एंडेंजर्ड मान करके उनके डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन पर काम किया जाता है। और एक आंकड़ों के अनुसार अब भारत की 196 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि उन्हें अब 10,000 से भी ज़्यादा कम लोग बोल रहे हैं। और ये भी बता दूं कि एंडेंजर्ड का मतलब ख़त्म होना नहीं होता है, बस ये होता है कि उसे बोलने वाले व्यक्ति की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसका बस सबसे बड़ा कारण यही है कि उस भाषा का इस्तेमाल लोगों ने कम कर रहे हैं, इसीलिए वो भाषा जो है धीरे धीरे विलुप्त तो होने की कगार पर है। दोस्तों, किसी भी भाषा को बचाने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी उसे बचाने के लिए ज़रूरत होती है एक ऐसे घर की जिसमें वो भाषा बोली जाए, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो आने वाली पीढ़ी होती है, उसे सौंपी जाए। 5:27 का वक्त सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी कार्यक्रम, और आज हम मना रहे हैं हिंदी दिवस पर एक अलग अंदाज में। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ज्वेल थी फिल्म का ये मीठा संगीत ओनली ऑन एफएम रेनबो जो है म्यूजिकली योर्स। और दोस्तों आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में आपकी आर्ज दोस्त अमिता बात कर रही है मातृभाषा की, वो भाषा जिसपे हम पहली बार माँ कहना सीखते हैं, जिसकी वजह से हम महसूस करना और साथ ही साथ अपने आप को व्यक्त करना सीखते हैं। दोस्तों जब बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं ना, तभी वो भाषा जिंदा रहेगी। दादी से कहना होता है कि आप उसी भाषा में कहानी सुनाइए जिसमें हम भी समझ सके, बच्चे भी समझ सके। अपने लोक गीतों को गुनगुनाइए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो भी हो दीजिए, उन कहावतों को याद रखिए और उन्हें साझा करिए, क्योंकि भाषा किताबों में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल से ही जिंदा रहेगी। और ये भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों कि अपनी मातृभाषा से प्यार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम दूसरी भाषा ना सीखें। अपनी मातृभाषा में बोलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम दूसरी भाषा को जाने नहीं समझे नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए। इंग्लिश सीखिए, फ्रेंच सीखिए, स्पैनिश, तमिल, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, जो चाहे दिल करे वो सीखिए, क्योंकि एक नई भाषा सीखना यानी एक नई दुनिया से मिलना होता है। लेकिन हाँ, दूसरी भाषा सीखते सीखते अपनी भाषा को मत पीछे छोड़िए, बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि दुनिया की भाषाएं हमें दुनिया से जोड़ती हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। और आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में बस आप सभी को एक छोटा सा रिमाइंडर कि अपनी भाषा बोलने में कभी भी शर्म मत कीजिए।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

5:50 का वक्त दोस्तों सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी कार्यक्रम ओनली ऑन एफएम रेनबो मुंबई जो है म्यूजिकली योर्स और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता जो लेकर आती है अपने साथ अपना सुनहरा पिटारा जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें और गाने भी और मुझे पता चल रहा है कि आज के जो गाने हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस जो पहुंच गए हैं मुझ तक। प्रकाश शिंदे लिखते हैं कि भई अमिता जी मेरी मातृभाषा मराठी है, हिंदी भाषा के साथ मेरा परिचय कक्षा 5वीं से हुआ था और जब से मुंबई आया हूँ तब से हिंदी मराठी और अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। आकाशवाणी एफएम रेनबो के पूरे परिवार को और सभी सुनने वालों को वो दे रहे हैं हिंदी भाषा दिवस और गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकाश जी आपको और आपके पूरे परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के हिंदी दिवस की भी और साथ ही साथ गणेश चतुर्थी की भी। वहीं विजेंद्र खटोल अकोला से लिखते हैं कि भाई गाने जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। राकेश माथुर जो हैं वो भी यही बात लिख रहे हैं कि गाने की जो प्लेलिस्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है और पंकज मोहोड का भी मैसेज आया है, उन्हें भी बातें और गाने दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। संजय पाटिल सुरेश यवतमाल से और मुकेश वालिया देहरादून से इनका मैसेज आया है। इंदौर से मैसेज आया अजय साखरे का, ये भी कह रहे हैं कि नाइस प्लेलिस्ट, साथ ही साथ गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं भी उन्होंने भेजी है। वहीं वैदही का भी मैसेज आया है, लिखती हैं गुड इवनिंग आरजे अमिता और गणपति बप्पा मोरिया। दत्ता केदार का मैसेज आया है पंढरपुर से और अंधेरी ईस्ट से अंजू जी ने भी हमें मैसेज किया है, भई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक और मैसेज है आसाम से हितेंद्र दास का। दोस्तों आप सभी ने मैसेज किए, हमारा साथ दिया और साथ ही साथ आप तुरंत जो फीडबैक देते हैं ना वो भी बहुत मदद करता है हमें कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। और आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर हम हिंदी के साथ ही साथ अपनी मातृभाषा के बारे में बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि कई बार अगर हमें कोई दूसरी भाषा नहीं आती है और अगर हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो कई बार हम दूसरे चाहे छोटा हमें समझे या ना समझे हम अपने ही दिल में हमें लगता है कि अरे अगर हमने अपनी ही मातृभाषा में बात किया तो सामने वाला क्या सोचेगा, भाई कुछ भी नहीं सोचेगा। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर के उस डर को और शर्म को हमें बाहर निकालना होगा कि

करेंगे, क्योंकि भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हर भाषा में एक माँ अपने बच्चे को प्यार से पुकारती है। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी कार्यक्रम, अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में अभिलाषा फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम लव यू जिंदगी होता है समाप्त। ठीक 6:05 पर हमारे नागपुर केंद्र से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और मैं मिलूंगी आपसे लेकर कार्यक्रम अंदाज़ बयां ठीक 6:15 पर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने FM Rainbow मुंबई रेडियो स्टेशन पर जो है म्यूजिकली योर्स। और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता, लेकर अपने साथ अपना सुनहरा पिटारा। और शाम के ठीक 6:16 का वक्त है कार्यक्रम अंदाजे बयां का। अंदाजे बयां की वो महफिल जहाँ बातें सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, और आज इस महफिल में रंग है उत्सव का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्सव की, वो उत्सव जो हमारी जिंदगी को बेरंग होने से बचाता है। एक ऐसी धुन जिस पर सिर्फ पैर नहीं बल्कि दिल भी झूम उठता है, वो उत्सव जो हमारे एकदम एक कहते ना डे टू डे जो रूटीन होता है उसे तोड़कर उसमें एक नया उमंग का रंग भरता है।

0: अनुराधा पौडवाल, बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाजों में ढाई अक्षर प्रेम के इस फिल्म का ये गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो मुंबई, जो है म्यूजिकली योर्स।
1: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
5: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है एफएम रेनबो का राज।
0: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
6: दम दम उड़ती है दुआ, सौ पंख लगा तेरे नाम के।
0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां, और आज अंदाज़े बयां कार्यक्रम में रंग है उत्सव का। दोस्तों, आखिर उत्सव है क्या? क्या सिर्फ घर की सजावट, या सिर्फ नए कपड़े, मिठाइयां, रोशनी? शायद नहीं। उत्सव तो वो एक एहसास होता है ना, कि जब आपका मन मुस्कुराने लगे, जब अपने भी पास आ जाएं, और जब जिंदगी को जीने की एक नई वजह मिल जाए। कभी दिवाली की जगमगाहट में उत्सव है, तो कभी होली के रंगों में, कभी ईद की मिठास में, तो कभी क्रिसमस की उन रोशनियों में, कभी गरबा की थाप में, तो कभी गणपति बप्पा के जयकारों में। भारत की खूबसूरती ही यही है दोस्तों, यहाँ हर मौसम में एक उत्सव है, हर उत्सव में एक रंग, और हर रंग में जिंदगी की एक नई उमंग।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां ओनली ऑन एफएम रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स, और आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो मुंबई चैनल। ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही साथ अब आप जब चाहे जहाँ चाहे एफएम रेनबो मुंबई से जुड़ सकते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से। और मैं भी जब मुंबई के बाहर यात्रा कर रही होती हूँ तब मेरे भी फ़ोन में न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और एफएम रेनबो मुंबई जो है वो बजता ही रहता है। दोस्तों आज अंदाज़े बयां कार्यक्रम में आपकी आज दोस्त अमिता और रंग लेकर आई है उत्सव का। लेकिन दोस्तों ये जो उत्सव है ये क्या सिर्फ कैलेंडर में लिखी तारीखों का नाम है, या फिर उत्सव हम तब भी मना सकते हैं जब माँ के हाथ से गर्मा गर्म चाय मिल जाए और दो पल सुकून के मिल जाए, जब बरसों बाद कोई पुराना दोस्त अचानक सामने आ जाए और जितनी भी बातें अनकहीं रह गई थी वो सारी बातें कह दी जाए, जब बच्चे की छोटी सी सफलता पर पूरा घर खुशियों से भर जाए, या फिर जब किसी की मदद करके दिल को सच्ची खुशी मिल जाए, जब बिना किसी वजह के हम खुलकर मुस्कुरा दें, वो भी तो उत्सव ही होगा ना।

प्रकाश शिंदे लिखते हैं, फीकी पड़ी जिंदगी में उम्मीदों का नया सवेरा लाते हैं, ये उत्सव ही तो हैं जो जीने के असली रंग सिखाते हैं, दूर कर देते हैं दिलों की सारी कड़वाहट और मायूसी, अपनों के करीब लाकर ये हर लम्हे को हसीन बनाते हैं। उत्सव के ये रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं लगते, ये तो रूह की खुशियों की महक से सराबोर करते हैं, ये तो रूह को खुशियों की महक से सराबोर करते हैं। हर त्योहार लेकर आता है एक नया पैगाम जो इंसान को फिर से मुस्कुराना सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे दूसरे भी जो लिसनर्स हैं, सुनने वाले हैं, उनके भी मैसेजेस, उनके भी फीडबैक हम तक पहुंच रहे हैं। अकोला से विजेंद्र घटोल लिखते हैं कि भाई बड़े दिनों बाद मोहब्बत फिल्म का गाना सुनने के लिए मिला, वहीं वैद्य ही जो हैं वो भी सुन रही हैं इस वक्त हमें। पंकज मोहोड पंढरपुर से दत्ता केदार और प्रदीप अनंत कृष्णन और साथ ही साथ मुंबई से फिरोज से गनपौरिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। और दोस्तों बस इतना ही कहूँगी कि जिंदगी को सिर्फ सांसों में मत गिनो, जिंदगी को सिर्फ सांसों में मत गिनो, कुछ पल खुशियों के भी नाम कर लो, मिल जाए जब अपने मुस्कुराते हुए उस लम्हे को एक उत्सव कर लो।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

और दोस्तों चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि हर दिन को त्योहार बना लो, हर पल को प्यार बना लो, क्या पता कल हो न हो, आज को ही यादगार बना लो। न कोई गम इतना बड़ा हो कि मुस्कुराना भूल जाए, न कोई मंजिल इतनी दूर हो कि रास्तों को भूल जाए। चलो आज फिर से जीते हैं, कुछ पल खुद के नाम करते हैं। जिंदगी रोज नहीं मिलती दोस्तों, चलो हर दिन को ही उत्सव करते हैं।

दोस्तों इसी गीत के साथ कार्यक्रम अंदाज़े बयां होता है समाप्त। ठीक 7 बजे आप हमारे मुंबई केंद्र से सुनेंगे मराठी में प्रादेशिक समाचार और मैं मिलूंगी आपसे लेकर कार्यक्रम हम तुम ठीक 7:10 पर।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर. और मैं हूं आपके साथ आपकी आज दोस्त अमिता, लेकर आई हूं कार्यक्रम हम तुम. और कार्यक्रम हम तुम वो कार्यक्रम जहां पूरी होती है आपकी फरमाइश. आप अपनी पसंद के गाने पहुंचाते हैं हम तक और फिर हम उन्हें पहुंचाते हैं आप तक. आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाने के लिए 8657661071 यानी कि 8657661071 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. और आज जैसे कि अंदाज़े बयां कार्यक्रम में हमने बात की उत्सव के रंग की, तो आज कार्यक्रम हम तो में भी आप जो भी गाने अपनी रिक्वेस्ट भेजें, बस ये ध्यान रखें कि उसमें रंग हो उत्सव का, क्योंकि आज हम स्वागत कर रहे हैं बप्पा का भी. और कार्यक्रम का ये पहला गीत विरासत फिल्म से चेतन कुमार की पसंद पर.

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत, जिसकी फरमाइश हमें भेजी दीपा पालकर ने, साथ ही साथ नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर ने। और अब कार्यक्रम हम तुम्हें बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, और रिक्वेस्ट है अजय साकरे की।

0: रामलीला फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई अकोला से विजेंद्र घटोल ने, साथ ही साथ इचल करंजी से अरविंद कुलकर्णी और हैं ये पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति भूमिका अरोड़ा और इसी गाने में जो पसंद शामिल हो रही है ततरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा की।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में उत्सव फिल्म का ये मीठा सा गीत, और इस गीत की पसंद भेजी थी हमें फिरोज से गनपोरिया, और साथ ही साथ पंकज मोहोड कोल्हापुर से, रघुनाथ खानुकर ने, और अहमदाबाद से आकांक्षा मनोज सिन्हा ने। और दोस्तों अब 7:40 का वक्त हो रहा है, सुन रहे हैं आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम, और आज मैं हूँ आपके साथ आप आरजे दोस्त अमिता। और अब जल्दी जल्दी पूरी करने की कोशिश करूँगी आपकी पसंद की, जितने ज़्यादा हो सके आपकी पसंद आप तक पहुँचे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आ रहा है आपकी पसंद का गाना।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद यही लाइन जो है हर उस लिसनर के मन में भी चलती होगी जब उनका पसंद किया हुआ गाना रेडियो पर बज जाए। फिलहाल बता दूं, एक रिश्ता फिल्म का ये गीत प्रकाश शिंदे की पसंद पर। और अब मेरे यानी कि आपकी आरजे दोस्त अमिता के आप सभी को टाटा बाय बाय कहने का भी वक्त आ गया है, क्योंकि स्टूडियो में आ गए हैं आरजे अभिषेक, जो कि 8 बजे लेकर आएंगे रॉक विद द चॉक। पर उससे पहले जरा रुकिए, जरा सब्र करिए, क्योंकि अभी भी कुछ समय है हमारे पास और अभी कुछ और फरमाइश पूरी हो सकती है। आपको छोड़े जा रही हूँ मैं कुछ गीतों के साथ, और साथ ही साथ बता दूँ इन गीतों के साथ पूरी होगी प्रमोद चिंचोलकर, जिन्होंने मैसेज किया उम्र अकोला से, और साथ ही साथ काजल कक्कड़ और पुणे से राकेश माथुर की पसंद पर हम गीत सुनने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मैसेज किया। वैदेही का मैसेज आया, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने मैसेज किया जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ दत्तात्रेय आड़त का वेलापुर से भी मैसेज आया है, और मैसेज आया है हमें राजेंद्र बापे का। और हितेंद्र दास ने हमें मैसेज किया आसाम से, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, भरत, बंटी, बबली वर्मा का मैसेज आया जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और हमें मैसेज किया नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से ही कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी में गोस्वामी ने। और दोस्तों, अब लेती हूँ मैं आप सभी से इजाज़त इसी वादे के साथ कि बहुत ही जल्द होगी हमारी और आपकी अगली मुलाकात। और हमारी अगली मुलाकात तक रखिए अपना और अपनों का अच्छी तरह से ध्यान।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
0: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
2: कोई लुभाए शेरो शायरी से
0: तो सुकून से भरी किसी की आवाज।

0: Well, this is just the beginning of the festive season and can't even tell you how excited I am. Well, after, once Ganesh Chaturthi is gone, we will have more festivals coming in our way right here in India. And Ganesh Chaturthi is actually setting the festive mood, you know, which you can almost feel the excitement building across the country. Soon the colors are going to change, the music is going to get louder, and those dancing shoes are going to come out. Because up next is Navratri. But before we get there, of course, right? Let's talk about, Ganesh Chaturthi. I'm sure you all have had certain special memories while growing up. Especially back in the school days, I always used to think about, what's going to happen when we have the Ganpati holidays. And now that, we're all working professionals, we all look forward to that long weekend. I mean, what if Ganesh Chaturthi actually comes on a Monday or Ganesh Chaturthi comes on a Friday? And this year, we were lucky enough that Ganesh Chaturthi has actually come on a Monday, which gives a long weekend to all the corporate professionals, which is a fantastic thing, right? So a lot of people get a chance to go and visit their natives. They get a chance to go and meet their relatives in their villages. And of course, it's a family time that's going on, right? And we call that like a total fam jam. And this fam jam is extremely important in everybody's life, right? Well, so up next, I'm going to be going ahead with Unwind, but that starts at 9:15 p.m. You can send in your requests and also name the person you want to dedicate the song to. And you can reach out to me on WhatsApp. Just text me your request, your name on 865-766-1071. I am RJ Abhishek. You can call me ABK. And I'm right here in the studios for you, taking you through your Ganesh Chaturthi evenings. Up next, we've got the news coming up for you. Stay tuned. And I'm going to be right here for you.
1: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
2: Where there are two major conflicts, where there are big divides.
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
3: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दो दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
5: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की

0: अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
4: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
5: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले

0: जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिस्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent the countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
4: BRICS summit was taking place

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी

किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिंदगी में कुछ रास्ते हम बहुत सोच समझ कर चुनते हैं और फिर उन्हीं रास्तों पर चलते हुए कभी पीछे मुड़कर देखते हैं ना दोस्तों, तो लगता है कि कितना कुछ था जो हमने वहीं छोड़ दिया। लोग, मुलाकातें, छोटी छोटी खुशियां, वक्त गुजर जाता है लेकिन बीते हुए दिनों की खुशबू ना कहीं हमारे आसपास बनी रहती है। शायद वक्त का तकाजा या दिलों का हौसला। रंगे महफिल में आप हैं विनीता बेदी के साथ।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

दोस्तों, कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी खामोशी होती है। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि आवाज में छिपी थकान क्या है या चुप्पी में छिपा दुख क्या है। ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, और अगर कभी मिल जाए ना तो उन्हें संभाल कर रखें।

पता ही शिकायतें हमेशा नाराजगी नहीं होती। कभी कभी शिकायत का मतलब होता है कि दिल ने अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती उससे तो कभी शिकायत हो ही नहीं सकती। इसलिए रिश्तों में आई हुई शिकायतों को हमेशा दुश्मनी नहीं समझिए। कभी कभी शायद वो रिश्तों को बचाने की आखिरी कोशिश होती है, या फिर ये भी कि दिल इतना हताश इतना निराश हो चुका है कि शायद कुछ कहने को सुनने को बचा ही नहीं है।

0: सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंग महफिल में अपने दोस्त विनीता बेदी के साथ। कभी कभी दिल को बस थोड़ी देर चाहिए होती है, ना कोई जवाब ना सफाई, बस कुछ पल बिना किसी बोझ के। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन आखिरी में जिस शय की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ सुकून। और सुकून किसी चीज का नाम नहीं, दिल के एक एहसास का नाम है।

आज के रंगे महफिल की आखिरी गजल। याद की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो किसी भी दूरी को मानती ही नहीं, जिसे हमसे बिछड़े सालों बीत गए वो भी किसी उदास रात को दिल के बहुत करीब हो सकता है। बीता हुआ वक्त जैसे अचानक से ही सामने आ बैठे, हम उससे कुछ कहते तो नहीं, बस यादों में कुछ देर उसके साथ मिल बैठते हैं। लगता है खोया हुआ सुकून एक बार फिर से मिल गया। ख्वाबों की इस तासीर के साथ ही दोस्तों विनीता बेदी को दीजिए इजाजत आज का रंगे महफिल यहीं समाप्त करने की। कल फिर मिलेंगे कुछ और गजलों के साथ, तब तक नमस्कार, शब्बा खैर।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं दुर्गेश। रात के 12 बजने को है। आइए अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। समाचारों के साथ मैं दुर्गेश। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जनसूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। देश में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति में अगस्त में मामूली वृद्धि हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। समाचार समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं दुर्गेश आपका स्वागत करती हूं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आवर शो मिडनाइट लेट नाइट मूड।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: कोयल सी तेरी बोली।

0: हाय हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई।

आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। देश में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति में अगस्त में मामूली वृद्धि हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 1:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब शुरू होता है सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे कुछ सॉफ्ट रोमांटिक गाने और कुछ 90s के गाने, यानी टोटल मिक्स बास्केट आप सुनेंगे जिसमें आप नॉनस्टॉप गानों का मजा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस गाने से और फिर गानों की लड़ी शुरू होती है अब।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

कार्यक्रम सुहानी रात अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आकाशवाणी 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।

रात के 2:12 हुए हैं, ये सुनते हैं समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के

सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को आभार व्यक्त किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। आकाशवाणी रेनबो पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम।

जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार सुबह के 3 बजे के। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और 2 बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण

न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। राजस्थान में शहरी

अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरी बार देश का सर्वोच्च राजभाषा सम्मान कीर्ति पुरस्कार मिला। और अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बीरी ठाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 3:03 और 26 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे मिडनाइट मेलोडीज में नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। तो शुरुआत करते हैं अनुपम रॉय की आवाज में पीकू फिल्म के इस गाने के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: की तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 4 बजे हैं, ये सुनते हैं हिंदी में मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और 2 बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में 6 देशों और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक विशेष स्टार्टअप पवेलियन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेगी और लोकार्पण करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके

एफ जूनियर विश्व कप शॉटगन में हिस्सा लेंगे। भारतीय खिलाड़ी 5 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसी के साथ समाचार अब समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर FM रेनबो 102.6।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंदी पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें।
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर। हिमालय की